0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ পুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी

0: भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m, the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m, he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry.

0: শিল্পী তথা অভিনেত্রী দীপলীনা ডেকাই এই শোভাযাত্রা উদ্বোধন করব। দুপৰীয়া 12 বজাত ফাট বিহুৰ মুখ্য আকৰ্ষণ মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। জ্যেষ্ঠ বিহুৱা নিৰঞ্জন গগৈয়ে শতাধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা মুকলি কৰিব। দিনৰ 2 বজাৰ পৰা ফাট বিহু সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত গোস্বামীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া মুকলি সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব। নবনির্বাচিত বিধায়ক ডঃ রনোজ পেগু, লক্ষিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, ঢকুৱাখনাৰ বিধায়ক নবকুমাৰ দলে আৰু সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ভাগ ল'ব। মুকলি সভাত লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডঃ পুষ্প গগৈ নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে উপস্থিত থাকিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কুমাৰণী চিগা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কালি নিশা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন লোক থিতাতে নিহত হয়। মৃত লোকজন চৰাইদেউৰ জিতুল সোণোৱাল বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ চালকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा

0: बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक

0: श्रमिकों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत

0: इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ पे, जो कि हमने बचपन से सुना है और हमारे स्कूलों में जो है ये प्रार्थना भी होती रही है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात ना करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जाने?
1: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
0: जी।
1: जो आपको रीचेबल हो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेन ज़ी जो श्रोता हैं, वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्यास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी ना किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं, और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है, और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है, और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनुम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं और अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

आज के इस प्रसारण में हाजिर हूँ मैं करुणा श्रीवास्तव आपके लिए लेकर गीत और संगीत का खजाना। लेकिन गीतों के सुहाने सफर पर चलने से पहले आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत और 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर आप सुन पाएंगे सब रंग और 1:05 पर रिले किया जाएगा अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम गीतिका और 1:40 पर आप सुन पाएंगे शीर्षक संगीत। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा गीत अपना धुन पर आई और इसके साथ ही आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

तो ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्रेक के बाद से। आवाजें हैं विशाल ददलानी और अलेसा मेहंदोसा की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गैंगस्टर फिल्म का गीत। आवाज है अभिजीत की। गीत है नीलेश मिश्रा का और संगीत है प्रीतम का।

कल सोमवार है और हर रोज की तरह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 12:30 पर पेश किया जाएगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना और 1:05 से रिले किया जाएगा अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर गीतमाला और 1:40 से हम आपको सुनवाएंगे वतन के तराने। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। कल के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा चयनिका, जिसे आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे से। इस कार्यक्रम के साथ ही कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

तो ये थी कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और अब सुनिए सब रंग। सबसे पहला गीत सुनिए लकी फिल्म का, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

0: इस गीत के साथ ही सबरंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अभी 1:05 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडिया वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से हमारे कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। और हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम गीते का। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में कश्मीर की गली फिल्म का गीत।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है शीर्षक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए क्योंकि फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं केके की और शान की आवाज में 10 फिल्म का गीत।

0: detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame speed chahiye, hame game nahi, solutions chahiye, hame राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamilag Vetri Karagam, TVK, actor turned politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all. After that, Mr. Vijay went to the Chief Minister's office at Fort St. George and signed the files.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत

0: स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और हम हाजिर है लेकर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

इस गीत के साथ ही गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम यही समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए करुणा श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शारणी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मौखिक स्वास्थ्य केवल हमारे दांतों और मसूड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। एक स्वस्थ मुख न केवल हमें सुंदर मुस्कान प्रदान करता है, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है।

0: आप सभी जानते हैं कि मौखिक रोग जैसे कि दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी आजकल बहुत सामान्य हो गए हैं। आज हमने सोचा कि अपने इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दें मौखिक स्वास्थ्य पर। आज हमारा विषय है ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी मौखिक स्वास्थ्य से संपूर्ण स्वास्थ्य। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। आप फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल रहे हैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में, और अभी आप वाइस चांसलर हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार डॉक्टर महेश वर्मा आपका स्टूडियो में।
1: नमस्कार शाली जी, नमस्कार।
0: सर आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि ओरल हेल्थ पे हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दांतों की होती है, मसूड़ों की होती है, पूरे मुख की होती है, उस पर हम अलग अलग कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में करते आए हैं। पर आज क्योंकि आप यहाँ है, इतनी वास्ट नॉलेज आपके पास है, आप जानकारी रखते हैं, हम चाहेंगे कि संपूर्ण तौर पर हम डिस्कस करें ओरल हेल्थ को। और कई बार हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा जो मौखिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो शरीर के विभिन्न अंगों को भी वो कहीं ना कहीं विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये जानकारी भी आज आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपने श्रोताओं को देना चाहूंगी कि आप पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, भारत सरकार द्वारा बीसी रॉय अवार्ड आपको मिल चुका है, साथ ही साथ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड आपको मिल चुका है, और हाईएस्ट अवार्ड हिमाचल प्रदेश प्रेरणा स्रोत आप रिसीव कर चुके हैं, और दिल्ली स्टेट का भी हाईएस्ट अवार्ड ले चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर की इतनी जानकारी हमारे साथ हमारे श्रोताओं तक आज पहुंचेगी, इसके लिए आप यहां आए हैं और हमारे कार्यक्रम का भाग बन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद शालिनी जी।
0: तो सर सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलें कि ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, व्हाई इज ओरल हेल्थ सो इम्पोर्टेंट।
1: देखिए आज सुंदर दिखना तो सभी को अच्छा लगता है, बट उसके पीछे जो सुंदर मुस्कान है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि सुंदर दांत और मसूड़े और दिल जो है वो इकट्ठे धड़कते हैं, उनका चोली दामन का दाल साथ है।
0: खूबसूरत सी बात है
1: कि देखिए हम हमारा जो मुख है वो वास्तव में जो हमारा समग्र जो स्वास्थ्य है उसका एक दर्पण है और उसका एक मिरर है या गेटवे है। देखिए हम कोई भी जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी वानगी निकालते हैं, तो हमारा जो माउथ है ये हमारे शरीर की वानगी है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे मसूड़े फूले हुए हैं या मसूड़ों में सूजन है तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे शरीर में सूजन है। तो इसका जो अभिप्राय है, जो एक समग्र स्वस्थ मुख का जो अभिप्राय, वो बहुत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, उसका जो कनेक्ट है वो डीपली कनेक्टेड है हमारी बॉडली हेल्थ से, हमारे सिस्टमिक हेल्थ से। और मैं तो ये कहूंगा कि स्वस्थ मुख का अर्थ है स्वस्थ शरीर, बेहतर पाचन, स्पष्ट वाणी और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन। तो देखिए कि कितना कितना ये जो है कितना डीप सीटेड है,
0: डीप है,
1: है ना। और हम जो अक्सर क्योंकि होता क्या है कि जो मुख की बीमारियां हैं हम उसे बहुत महज टाल मटोल करके इधर उधर कर देते हैं, पर आप देखिए कि इसका कितना गहरा शरीर से कनेक्ट है। और अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है, बहुत सारी चीजें जो है वो मुख से ही शुरू होती हैं और वहीं के जो कीटाणु जीवाणु बैक्टीरियाज वो जो खून में चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और फिर वो जो कीटाणु जो पूरे शरीर में हलचल पैदा करते हैं
0: जिससे बीमारियां होती हैं,
1: जिससे बीमारी होती है। आप देखिए कोई आज हम एंटीबायोटिक्स देते हैं या दवाई देते हैं तो क्या करते हैं, हम बैक्टीरियाज को की रोकथाम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बैक्टीरियाज को हम छोड़ देते हैं और उसको हम अपने ब्लड स्ट्रीम में मसूड़े अगर फूले हुए हैं वहां से माउथ में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो बस ताक में बैठे हैं कि मैं कैसे ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन में जाऊं, वहां अपने आप को साबित करूं और फिर अपना अपना असर दिखाऊं। तो ये अगर हम इससे इसको हम रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप नहीं सोचते कि हम शरीर की कितनी और बीमारियों से

0: वंचित हो सकते हैं या उनसे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, प्रिवेंशन। ये मैं तो ये कहूंगा कि ओरल हेल्थ मेंटेनेंस जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है आपकी बॉडीली हेल्थ को ठीक रखने में।
1: तो चलिए, ये टॉपिक डॉक्टर साहब ने विस्तार से समझा दिया कि आज हमने जो लिया है उसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपने कहा कि ओवरऑल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओरल हेल्थ। और जब हम दांतों की बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, एक खूबसूरत मुस्कान की बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात आपने बहुत खूबसूरत बात बोली थी, डायरेक्टली वो रिलेटेड है हमारे हार्ट से। अगर हम खुश होते हैं तो अपने आप ही वो जो स्माइल और एक होती है वो एक अच्छी सी निकलती है, और अगर हम सिर्फ शो कर रहे होते हैं तो वो एक अलग ही होती है, वो इम्प्रेस भी नहीं कर पाती है। तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं, 4 बजे तक रहेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत हमने सुना और खास तौर पर डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत था, तो क्यों पसंद है ये इतना आपको?
1: नहीं, नहीं, ये इस गाने में बहुत कुछ छुपा है।
0: अच्छा,
1: तो कहना है, कहना है तुम ही तो लाई हो जीवन में प्यार, मैं तो ये कहूंगा कि ओरल हेल्थ के प्रति कुछ कहना है।

0: कुछ कुछ मुख स्वास्थ्य के प्रति कहना है। अगर आप मुख स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो जीवन में प्यार ही प्यार है।
1: वाह,
0: फिर कितना गहरा रिलेशन है। और इसमें एक और चीज आती है कि आज बस करना है इकरार, तो आज हमें एक वादा करना है, एक रिजॉल्व लेना है, एक इकरार करना है कि हम आज के बाद अपने मुख के प्रति ज्यादा सजग रहेंगे, ज्यादा हम इसके बारे में ध्यान देंगे। और जो एक ढुलमुल रवैया है हमारा अपने स्वास्थ्य के प्रति इन जनरल एंड ओरल हेल्थ के प्रति इन पर्टिकुलर, उसके बारे में इकरार करना है। और ये हमें एक इसके बारे में एक हमें डिसीजन लेना है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कार्यक्रम के अंत तक, जब हमारा कार्यक्रम खत्म होगा 4 बजे तक, तो हमारे सारे श्रोता आपके साथ साथ जो आप कह रहे हैं उस चीज को मानेंगे और हमें फीडबैक में हमें बताएंगे, हमारे मेल पर लिखेंगे और बताएंगे कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हमारे एक कॉलर है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: पहले तो शर्ली मैम को, शर्ली साहब को नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार राजेंद्र जी।
2: हाँ, और डॉक्टर साहब को भी सही दिल से नमस्कार और आभार।
1: जी बताएं, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपको?
2: हाँ, तो मेरे 3-4 छोटे छोटे सवाल है। हाँ, पहला सवाल मेरा यह किसी किसी शख्स को यदि टॉन्सिल है, थायराइड है या फिर जो है सर्वाइकल है स्पॉन्डिलोसिस, तो क्या इसका भी मसूड़ों पे और दांतों पे और टंग पे जीभ पे असर पड़ता है, पड़ सकता है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि जब बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं जब वो गिर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या एहतियात बरती जाए कि जब नए दांत आते हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हो? मेरा ये है
1: जी।
2: तीसरा सवाल, खाते पीते हैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती रहती है दांतों की, पर क्या इसके अतिरिक्त भी कोई दांतों की और मसूड़ों की और जीभ की एक्सरसाइज हो सकती है? सब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं।
1: ठीक।
2: और चौथा आखिरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरीके समझाने बहुत बढ़िया है, तो सर को मतलब अगर दुखी करना हो या हमारी क्लास ले तो उसका क्या उपाय है? बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछे।
0: हाँ, हाँ,
1: तो बताएं सर।
0: देखिए, पहले तो इनका सवाल था कि टॉन्सिल है या थायराइड है, अगर इस तरह की कोई शारीरिक बीमारी है या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो उसका क्या दांतों पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी जो इस तरह की बीमारी है जैसे डायबिटीज है वो भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यू नो, तो उसका जो असर मसूड़ों पे या और माउथ के दूसरे जो पार्ट्स हैं उस पे पड़ सकता है। तो ये दोनों ओर से है, मसूड़ों की वजह से भी कुछ खामियां हो सकती हैं शरीर में और अगर कोई शारीरिक बीमारी है उसका भी असर पड़ सकता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक सब चीज कंपोजिट है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, माउथ को बॉडी से सेपरेट नहीं कर सकते।
1: जी, जी।
0: दूसरा, इनका दूध के दांत जब टूटते हैं और नए ना टेढ़े मेढ़े आए तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो समय पे टूटने चाहिए, ना पहले टूटने चाहिए ना बाद में टूटने चाहिए। पहले टूटेंगे तो जो जगह बना के रखी है दूध के दांतों ने बनाई है परमानेंट के लिए वो टेढ़े मेढ़े आएंगे, और अगर हम बड़ी देर तक रखेंगे उनको, कई बार क्या होता है कि वो टूटते नहीं है तो कई बार डॉक्टर के पास जाके हमें निकलवाने पड़ते हैं, अगर वो नहीं करते तो भी दांत टेढ़े मेढ़े आ
1: सकते। तो सही उम्र क्या होनी चाहिए थोड़ा?
0: नहीं, हर दांत का अलग अलग है।
1: ओके,
0: है ना, हर दांत का अलग अलग है। दूध के दांत, हमारे पहला दूध का दांत 7 महीने में आता है, 6 से 7 महीने में, और 2 से 2.5 साल तक दूध के दांत सारे आ जाते हैं। परमानेंट दांत जो है वो 6 साल से आना शुरू होते हैं, 6 साल 7 साल और वो 11-12 साल की उम्र में कुछ दूध के दांत होते हैं कुछ पक्के दांत होते हैं। तो अब ये सोचिए कि 6 महीने से लेके और 12 साल तक कुछ पक्के दांत है कुछ दूध के दांत है। इसमें भी कई बार पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वो पक्का दांत खराब होता है और वो सोचते हैं ये दूध का दांत है।
1: अच्छा।
0: और कई बार वो कहते हैं चलो गलने दो ये तो
1: नया आ जाएगा।
0: उनको ये मालूम नहीं है कि 6 साल की उम्र में पक्का दांत आ चुका है और वो पीछे का दांत है, सामने का नहीं है, सामने का दांत 7 साल में आएगा। तो पीछे के दांत को ये भ्रम में रहते हैं कि ये तो दूध का दांत है, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट दांत है वो कई बार हम खो देते। तो ये सब चीजें जो है इसकी जानकारी आपको आपके डॉक्टर देंगे, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाएंगे उनको कंसल्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम अपने आप डिसीजन ना लें, हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास सिर्फ बीमारी में ना जाएं, हम चेकअप के लिए भी जा सकते हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच भी हो सकती है ताकि जो चीज है उस बीमारी को रोकथाम कर पाए हम और उसको बढ़ने ना दें।
1: तो डॉक्टर साहब,

0: पहली विजिट कितने एज में होनी चाहिए बच्चे की, अगर हम पहली विजिट की बात करते हैं?
1: देखिए ऐसा है कि पहली विजिट तो जैसे ही बच्चे के दूध के दांत आना शुरू हो
0: तभी हो।
1: बच्चे के दूध के दांत 6 से 7 महीने में आना शुरू करते हैं, और जब आना शुरू करें वो कंसल्ट कर सकते, क्योंकि दूध के दांत का भी सफाई बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चे जो है दूध के दांत के जब होते हैं तो दूध ज्यादा दूध पीते हैं, और दूध जो है उसमें मीठा है, अपना भी मीठा है और हम दूध को और मीठा करते हैं, और जब दूध भी और मीठा भी एक बैक्टीरिया के लिए बहुत ही आइडियल मीडियम है ग्रो करने के लिए। जब हमने दूध पिला दिया और उसमें मीठा भी है और
0: फिर सोते पिला दिया
1: तो क्या हुआ, माउथ में तो लाखों बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं और वो ताक में रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं झपटा मारूं, तो वो फिर बढ़ने लगते हैं और उससे जो है तो बचपन में भी कीड़ा लग सकता है। अच्छा। बचपन में भी
0: मतलब बीमारी की शुरुआत वहीं से हो सकती है।
1: और जब थोड़े से और दांत आने शुरू करते हैं तो मुसूड़ों की बीमारी भी शुरू हो सकती है, जिंजिवाइटिस हो सकती है। तो ये हम इसको सोचे कि नहीं अभी तो दूध के दांत, अभी कुछ नहीं होगा, पक्के दांत होंगे तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है,
0: ये अप्रोच गलत है।
1: हाँ, बीमारी वहीं से स्थापित हो गई है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और फिर बाद में जाके बहुत अपना असर करेगी।
0: तो शुरू से ही अलर्ट रहना है। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत अलर्ट हैं, तभी वो हम आपसे कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं। लाइन पर हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: मैम नमस्ते, मैं नीरज बोल रहा हूँ प्रयागराज से।
0: जी जी हाँ बताइए।
2: मैम मेरी मैडम है मिसेज, मैम उनके जो दांत हैं, दांत के ऊपर जो मांस नहीं होता उनको मसूड़ा बोलते, जो मैम वो मसूड़े जो है वो अचानक छोटे से बड़ा है, मतलब दोनों दांतों के बीच में बड़ा है। फिर उसको मैंने किसी डेंटिस्ट के पास गया था, फिर उसको मैंने सर्जरी करा दिया, मतलब उसको काट निकाल दिया। तो मैम फिर मैम 5-6 महीने ठीक रहा, फिर मैम को उनको लग रहा है कि फिर हमारे जैसे उभर रहे हैं, थोड़ा सा चुनचुनाहट बनी हुई है। तो सर से मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये है क्या?
0: जी सर बता रहे हैं।
1: देखिए ऐसा है कि कई इसको हम बोलते हैं गम एनलार्जमेंट।
0: ओके,
1: जो मसूड़े जो है वो फूले नहीं है पर वो साइज में बड़े हो गए हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब मसूड़े फूल जाते हैं, या वो ऐसी हार्मोनल स्टेज में होती हैं तब भी उससे भी मसूड़ों पे असर पड़ता है, और कई बार मसूड़ों की बीमारी से भी दांत फूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ एक दवाइयां हैं, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई है या कुछ मिर्गी की दवाई होती है।
0: अच्छा।
1: जब हम वो खाते हैं तो उसका असर है कि मसूड़े फूल जाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको ये सब ऐसा नहीं होगा, और कई बार बिना किसी कारण के भी मसूड़े का साइज बढ़ सकता है। अब ये बता रहे हैं कि दो दांतों के बीच का एरिया, अब वो मसूड़ा है या कई बार मसूड़े जैसी बढ़ने जैसी एक कंडीशन होती है, कोई ग्रैनुलोमा हो गया है या एक टिश्यू का जिसे टिश्यू ग्रो कर गया है, वो मसूड़े का टिश्यू भी हो सकता है, तो ये देख के ही बताया जा सकता है कि क्या है। बट बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है,
0: पर
1: घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई कैंसर नहीं है, और ये अगर है तो इसका इलाज है। कई बार दवाई से होता है तो हम दवाई बदल देते हैं ताकि ऐसी दवाई दे जिससे मसूड़ा ना फूले, और अगर मसूड़े खराब है तो मसूड़ों का इलाज कर सकते हैं। और जैसे इनका इनकी शल्य चिकित्सा पहले से हो गई है, दोबारा मसूड़ा बढ़ गया है, तो उसका कारण जो है हमें आंकना पड़ेगा कि क्या क्या कारण किस वजह से।
0: तो आप किसी के पास जा सकते हैं और एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं,
1: स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं।
0: स्पेशलिस्ट
1: मसूड़ों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं।
0: ओके अच्छा अच्छा, तो उनको दिखाना चाहिए,
1: उनको दिखा सकते हैं।
0: आइए लेते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो
3: हेलो
0: जी, नंदलाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी नंदलाल
0: जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं आनंद पर्वत से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं।
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपको भी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, नमस्कार।
3: मेरे दांत में एक खोड़हर है, जबकि इसका इलाज तो मैं कराया था, खिलता भी नहीं, दर्द भी नहीं इस समय है, लेकिन उसकी वजह से और कुछ नहीं हो सकता, दूसरे दांत को भी कोई नुकसान तो नहीं हो सकता।
1: हाँ देखिए ये बहुत एक बहुत ही अक्सर लोगों के मन में रहता है कि दांत में कीड़ा लगा है, वही शायद नंदलाल जी का इशारा इनका उसी तरफ है कि दांत में खोल है और पेन भी नहीं हो रहा है और इसका असर के दूसरे दांतों पे नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक तो ये है कि ये जो खोल है अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और दांत को पूरा खोखला कर देगा और फिर वो दांत हमें उस दांत को या तो अपने आप टूट जाएगा और फिर दांत हमें

0: निकालना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: और हाँ ये है कि अगर इस दांत में कीड़ा लगा है, इसका मतलब ये है कि इनकी सफाई का भाव है, इसका मतलब ये अपनी जो माउथ का जो स्वास्थ्य है उसको ये बरकरार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर एक दांत में कीड़ा लगा है तो बाकी में भी लगने की आशंका है, या हो सकता है इनको पता ना हो, अर्ली स्टेज में हो, तो मैं इनको ये कहूंगा कि अपना चेकअप कराएं। और अगर इस कीड़े में, अच्छा कई बार क्या होता है जब कीड़ा लगता है तो वो दांत जो है वो डेड हो जाता है, और डेड हो जाता है तो बीमारी तो बढ़ रही है पर पेन हो नहीं रहा क्योंकि दांत तो डेड हो गया है।
1: अच्छा,
0: हाँ तो पेन तो ये सोचते
1: मतलब सिम्टम नहीं हो पाए,
0: सिम्टम नहीं हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा बट वो तो खोखला कर रहा है।
1: ओके।
0: तो और फिर अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो बाद में उसका तो एब्सेंस फोड़ा बन जाएगा, तो दांत के जड़ के नीचे फोड़ा बन जाएगा और फिर सूजन हो जाएगी और फिर
1: तो
0: बहुत सारी
1: सीरियस,
0: हाँ बहुत सारी और कंडीशन हो। तो यही राय है नंदलाल जी से कि जाएं दिखाएं और जो उसका इलाज है वो तुरंत कराएं।
1: जी, और मैसेजेस भी बहुत सारे आ चुके हैं। डॉक्टर साहब असम से लिख रहे हैं हितेंद्र दास जी, रेडियो डॉक्टर शो इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच कि आप सुन रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया है, परिधि ने लिखा है दिल्ली से, नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर वर्मा, रेडियो डॉक्टर इज माय फेवरेट प्रोग्राम एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। क्वेश्चन ये है कि अगर टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया है और उसको किसी इम्प्लांट से प्लेस नहीं किया गया, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, तो क्या ये ठीक है या बाद में जाकर कोई इशू बन सकता है, जैसे आपने बताया नहीं, छोड़ना नहीं है
0: किसी। नहीं देखिए ऐसा, ये भी बहुत मैं सोचता हूँ कि ये जो सवाल परिधि जी ने किया है वो उससे लाखों और जो श्रोता है हमारे उनको ये उसका जवाब मिलेगा। देखिए ये अक्सर आता है कि निकाले तो क्या जरूरत है लगाने की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी एक दीवार है उसमें से दो ईंटें निकल जाए तो उनको लगाना जरूरी है क्या? नहीं लगाएंगे तो बाकी ईंटें भी हिलेंगी, गिरेंगी। तो यही वही है जो दांत की भीड़ है, उसकी में भीड़ में से एक ईंट आप निकाल दोगे, एक दांत निकाल दोगे तो ऊपर के नीचे आएंगे, साइड वाले जो है, क्योंकि दांत तो मसूड़े और जो हमारे जबड़े हैं उनमें इतना जोर है। आप देखा ना, मसूड़ों से हम कार भी खींच लेते हैं, इतना जोर है मसल्स में, इतना हुआ है, वो क्या दांतों को हिलाएंगे? जगह है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की कि अगर खाली जगह है तो उसको भरने की कोशिश होती है। तो ऊपर का दांत नीचे आ जाएगा, सारे टेढ़े हो जाएंगे, फिर उसमें विरल आ जाएगी, उसमें गैप आ जाएंगे, फिर खाना फंसने लगेगा। तो देखिए एक छोटी सी चीज जो है ना, वो कितना बड़ी इश्यू बना दिया उसने, उससे आपके मसूड़ों की बीमारियां हो गई, आपको कीड़ा लग गया, सिर्फ आपने ये एक था कि आपने वो दांत निकाला, आपने लगवाया, तो लगवाना चाहिए और तभी जो आपके सुचारू रूप से आपका जो मेस्टिकेशन है वो हो पाएगा।
1: तो बहुत अच्छा, अच्छी तरह से आपने समझाया कि वो एक बिल्डिंग की तरह है तो ये भूलेगा नहीं कोई भी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न भी था और इसका जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिया कि वो एक बिल्डिंग मानो उसको और एक ईंट निकल गई तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भर देना है। लेकिन या हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी हमारे पास एक कॉलर वेट भी कर रहे हैं फोन लाइन पर, उनको ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: गौतम से बोल रहा हूँ
1: जी। गौतम साहब,
2: मुझे ऑयल पुलिंग के बारे में पूछना है
1: जी।
2: हमारे आयुर्वेद में भी मुंह में जो औषधि द्रव्य उन्हें रखते हैं और उन्हें गंडोष प्रक्रिया कहते हैं, तो मेरा पूछना है कि क्या ऑयल पुलिंग से कुछ लाभ मिलता भी है कि नहीं, और नंबर दो, ऑयल पुलिंग कितनी देर करें और उसके बाद फिर मुंह को साफ करना है कि नहीं, कृपया विस्तार से बताएं।
0: देखिए ऑयल पुलिंग जो है ये आपका हमारा जो एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड है, वो हमारे हमारे जो हमारी जो ट्रेडिशनल डेंटल सर्जरी का ज्ञान है उसमें इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कोई वर्णन नहीं है, बट मैं सोचता हूँ कि जो ऑयल पुलिंग है उसमें क्या है कि ऑयल जो है माउथ में रखते हैं और उससे जो है हम होल्ड करते हैं और फिर वो जो ऑयल है उससे उसको हम स्पिट आउट कर देते हैं। तो देखिए ये एक पैलिएटिव तरह का रोल है, जैसे हम कोई माउथ वॉश करते हैं उसका असर है। तो देखिए कोई ये कोई थेराप्यूटिक, अगर मैं इसको कहूं कि ये कोई थेराप्यूटिक इससे प्रिवेंटिव हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है कि इसके बाद जो है हम बहुत सारी जो स्टिकी फूड है उस पे स्टिक नहीं करेगा, बट मैं कहता हूं कि जितने भी दांतों और मसूड़ों के विकार हैं वो लोकल कंडीशन से होते हैं, लोकल के उसमें खाना फंसा है या उसमें वो जो कैलकुलस हो गया है या प्लाक है या बैक्टीरिया है या सफाई का, तो उसकी वजह से। और इन सब कंडीशंस में जो ऑयल पुलिंग है वो उसका कोई ज्यादा बहुत रोल नहीं, जब तक हम उसका उसकी हाइजीन नहीं करेंगे खुद।

0: मेंटेन नहीं करेंगे या हम डॉक्टर से प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं कराएंगे, तो ये जो जितनी भी जो भी हमारे टारगेटेड इश्यूज हैं जिसको जिससे हम बचना चाहते हैं वो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये बात हो तो हम सिर्फ माउथ वॉश ही करते रहें, उसी से सब चीजें जो है हम प्रिवेंट करें। तो मैं ये नहीं, मैं इसको नकारना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूं कि इसका जो रोल है बहुत सीमित होगा, क्योंकि ये हमारी हमारी जो ट्रेडिशनल डेंटल सर्जरी एलोपैथी में जो इसका जो ज्ञान है उसके बारे में कोई इसका कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है।
1: ओके तो हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं और मैसेज भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। और खासतौर पर डॉक्टर साहब आपने ये कहा था कि ये गीत निकालना और ये जरूर श्रोताओं तक पहुंचाना, कैसे कहें हम?
0: अभी मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे कहें हम,
1: तो
0: कैसे कहूं मैं, कैसे
1: तो अब गीत के माध्यम से भी डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कैसे कहूं मैं। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। वैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कह रहे हैं।
2: कहें हम प्यार ने हमको

0: हमसे खुद से हम।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हमारा विशेष जो टॉपिक है वो है ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, और मौखिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य, ये हमारा विषय है। हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड वाइस चांसलर है डॉक्टर साहब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। इसमें बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूट भी आते हैं जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप गवर्न कर रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारी हमारे आज के रेडियो डॉक्टर के पास है और आप निरंतर उसका फायदा उठा रहे हैं। आप हमें फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दूर दराज में ग्लोबली हमारा प्रोग्राम सुना जाता है ऐप के माध्यम से, न्यूज ऑन एयर हमारा ऐप है। तो ये हमारे पास मैसेज आया है लंदन से, विश्वास जी ने लिखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपने आज लिया है। इनका क्वेश्चन है कि इज वॉटर फ्लॉसिंग एज इफेक्टिव एज थ्रेड फ्लॉस?
3: यू नो, आई थिंक दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। आजकल ये वॉटर फ्लॉसर जो है,
2: ओके,
3: यू नो द बेस्ट थिंग इज कि ये जो वॉटर फ्लॉसर्स है काफी कन्वीनियंट है फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, और दे आर क्वाइट गुड।
2: अच्छा,
3: दे आर क्वाइट गुड।
2: ओके,
3: अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये दे आर एज इफेक्टिव, बट देखिए एक वॉटर जेट जो है, जो प्लाक है या फूड डेब्रीज है, उसको किस हद तक निकाल सकता है ये डिपेंड करता है किस तरह स्टीम है, क्या डायरेक्शन है, उसमें कितना प्रेशर है, क्योंकि वाटर फ्लॉसर बहुत टाइप के हैं, बहुत हाई एंड भी है और बहुत बेसिक्स भी हैं। जबकि फ्लॉस जो है वो दंत धागा है, वो वैक्स धागा है जो आप फिजिकली आप कर रहे हो और आप इंश्योर कर रहे हो कि आपने दांत के जो बीच का सरफेस है उसको दोनों तरफ आपने उसको फिजिकली मूव किया है, उससे जो भी फूड डेब्री है वो निकल गया है। तो ये इफेक्टिवनेस पे है, बट मैंने देखा है कि मैंने खुद यूज किया है कि वाटर फ्लॉसेस आर क्वाइट गुड। आई वुड नॉट से कि दे आर ट्रूली सब्स्टिट्यूट टू अ रेगुलर डेंटल फ्लॉसिंग, बट दे आर फेयरली गुड।
2: So you recommended it.
3: Yeah, a good quality dental flosser, water flosser is okay.
2: जी, ऐसे ही एक और है प्रश्न, चित्रा सेठी जी लिख रही है अजमेर से, सर नाइट गार्ड क्या होता है और उसको लगाते वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए?
3: देखिए ऐसा है कि आज स्ट्रेस बहुत है और बहुत सारे जो हमारे कुछ एक हमारे जो भाई बहन हैं वो रात को जब सोते हैं तो दांत किड़किड़ाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसे हम कहते हैं ब्रक्सिज्म, यू नो, वो स्ट्रेस कारण भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है। बच्चों में कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, हाँ, उसकी वजह से है। हाँ, तो ऐसा, बट ये देख रहा है कि आजकल ये बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग जो है वो दांत ब्रक्स करते हैं, तो ये होता रात में जब हम सोते हैं, और उससे क्या है कि दांत ही घिसते नहीं है बट उसका पूरा अफेक्ट जो है, हमारा पूरा जो स्टोमैटोग्नाथिक सिस्टम है, हमारा पूरा जो जबड़े, मसल्स, टेंडन्स, टीथ, मसूड़े, पूरा जो एक अपराटस है उस पे पड़ता है।
2: अच्छा,
3: क्योंकि स्ट्रेस भी है और फोर्स भी है और वेयर भी है, तो उसको बचने के लिए हम रात को एक बड़ा सॉफ्ट मटेरियल का एक कवर होता है, उस सिर्फ दांत को कवर करता है,
2: सिलिकॉन बेस होता है,
3: सिलिकॉन टाइप है, बड़ा मुलायम होता है,
2: okay.
3: और बहुत पतला होता है, उसको वो डॉक्टर्स दांतों पे बना के देते हैं, कस्टमाइज है, ये नहीं है कि बाजार से आप खरीद लें, हर आदमी के दांत अलग होते हैं, तो बना के देते हैं, वो पहनते हैं ताकि आराम से वो सो सके और दांत आपस में किड़किड़ाए नहीं, और जो है एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, दांत घिसे नहीं, और वो जो स्ट्रेस से जो ऑनस्लॉट होता है दांतों पे या मसूड़ों पे उससे बच,
2: तो ये भी हेल्प करता है।
3: हाँ, ये प्रिवेंटिव अप्रोच है और बहुत बार ये प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स कि आपको गार्ड की, नाइट गार्ड की जरूरत है।
2: ठीक है, तो हमारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
4: नमस्ते मैडम
2: जी। नमस्कार,
4: आपका नाम शालिनी मैडम है ना?
2: जी हाँ, मैं बोल रही हूँ शालिनी मैडम।
4: तो आप अच्छे से कार्यक्रम वाले, आपके लिए धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अच्छा डॉक्टर साहब से पूछना है,
2: आप अपना नाम बता दीजिए।
4: रघुवीर जी, उत्तराखंड।
2: जी जी रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इसके लिए भी।
4: अलग अलग विषय में आप जो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अच्छी बात है।
2: चलिए आप सुनिए हमारे कार्यक्रम को, डेली हम आते हैं।

0: जो डॉक्टर लेकर 3 से 4 बजे,
1: क्योंकि आसाम से लेकर कहीं से मतलब पूरा हिंदुस्तान का कहीं से भी कॉल आ सकता है ना, बहुत
0: जी। और मैसेज आते हैं हमारे बाहर से भी, विदेशों से भी, अभी मैंने लंदन से मैसेज इंक्लूड किया है, तो मैसेज के माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं। और आज डॉक्टर महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार रघुवीर जी।
1: अच्छा मैं आपको थोड़ा हंसने वाले मूड में बोल रहा हूँ कि दांत मोती जैसा चमकना चाहिए, जैसे तो टूथपेस्ट तो हम कर देते हैं, तुम ब्रश कर देते हैं, तो मोती जैसा चमकना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा लोशन लाएं, हम लोशन लगाएं दांत में लगाने में
2: मोती जैसे चमकने के लिए मोतियों जैसे काम करने पड़ते हैं शुरू से। वो जो है वो अब इसके बारे में हम सोचते हैं जब बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए लोशन कुछ नहीं होता, ये हमारा एफर्ट्स हैं कि एक तो हमारा जो एटीट्यूड है कि हमें अपने दांत और मसूड़े सही रखने हैं, दिन में 2 बार ब्रश करने हैं, 2 बार 2 मिनट, और साल में 2 बार में हर 6 महीने में आप डॉक्टर को दिखाएंगे। और एक चीज जो है हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, वो है डेंटल फ्लॉस। देखिए अब ब्रश करने के बाद 40% जो हमारे दांतों का एरिया है, जो दांतों के बीच का है, उसे हम साफ नहीं कर पाते, तो फ्लॉस करें, फ्लॉस सीखें, एक धागा होता है जिससे हम दांतों के बीच में साफ करते हैं, संतुलित भोजन करें, और खाने के बाद कुल्ला करें, और मीठी चीजें कम खाएं, मांडदार चीजें कम खाएं, ये नहीं मैं कह रहा नहीं खाएं, खाएं जरूर, पर उसके बाद कुल्ला करें, तो एक छोटी छोटी देखिए छोटी चीज है, आपका जो छोटी एफर्ट है वो छोटी देखभाल बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव, ये मैं कहूंगा कि दांत का एफर्ट्स बड़ी छोटी छोटी हैं, पर उसका इतना विशाल प्रभाव है हम दांतों पे भी और हमारे हमारे शरीर पे भी, और रोकथाम की शुरुआत जो है वो मुंह से होती है। तो हम अगर अपना इसके बारे में हम सजग रहें और इसके बारे में हम अवेयर रहें, तो हम बहुत कुछ जो है फिर मोतियों जैसे दान जो है वो हम हमेशा जिंदगी के लिए, ये मोती हैं, सचमुच मोती हैं, जिसे हम गवा देते हैं या मोतियों को बदरंग कर देते हैं, मोतियों को घिस देते हैं, मोतियों को तोड़ देते हैं, उनको क्रैक कर देते हैं, तो ये सब चीजें देखिए मोती जब होते हैं ना हमारे पास, तो किस तरह से हम संभाल के रखते हैं, हम देखिए ना कि महिलाएं कैसे उनको वेलवेट शनील के पैकेट में डाल के रखती है, तो उसी तरह से हमें दांत को मोतियों की तरह हमें सजो के रखना है।
0: ये हमारे जो दांत हैं ये बहुत प्रेशियस हैं।
2: हाँ प्रेशियस हैं,
0: इनको भी हमें संभालना चाहिए।
2: इसको हम पत्थर की तरह ना इस्तेमाल करें ना, कि कहीं कोई भी चीज कर ली, बोतल खोल ली, ये कर लिया, ऐसे मुंह से तोड़ लिया, ये चीजें नहीं, वो भी तो कोमल है, उसमें भी जान है, उसको हम बेजान मत बनाइए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया खाने के लिए, एक जो बहुत आम चीज है वो है चाय और कॉफी, ये हम बहुत पीते हैं, और खासतौर पर ऑफिस में आजकल जो एक ट्रेंड सा है कि हम थोड़ा भी फ्री हुए तो हमें लगता है चलो कोई आया है तो चलो चाय पी लो, कॉफी पी लो, ये क्या कितना नुकसान कर सकता है?
2: देखिए चाय और कॉफी में टैनिन होता है विच इज एन एस्टिंजेंट। देखिए चाय कॉफी के 2-3 इश्यूज है, अगर चाय में मीठा है और दूध है तो दोनों चीजें जो हैं ये बैक्टीरियोजेनिक है, दैट मीन मीठा और दूध वो आइडियल मीडियम है बैक्टीरिया के पनपने के लिए, तो हम चाय पीने के बाद अक्सर कुल्ला तो करते नहीं है, तो ये जो है एक ग्राउंड बन जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। कॉफी क्या है कि कॉफी अगर मीठी है तो वही यही सिचुएशन है, और कॉफी वैसे भी स्टेन करती है, आपने देखा होगा कॉफी पी के, हम हमारे भारतवर्ष में हम हल्दी यूज करते हैं तो हमारे दांत जो है अक्सर पीले पड़ जाते हैं, जबकि ये हल्दी बाहर के विदेशों में लोग हल्दी यूज नहीं करते तो उनके दांत थोड़े कम येलोइश होते हैं, तो बट ये इसके अलावा कोई अगर स्टेन्स हो गए हैं तो हम दांतों की क्लीनिंग करा सकते हैं, कई बार बदरंग हो जाते हैं दांत तो ब्लीचिंग भी हो जाती है ना, बट ब्लीचिंग भी एक केमिकल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है ना, उसका दुष्प्रभाव दांतों पे भी पड़ सकता है, मसूड़ों पे भी पड़ सकता है, दांत थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं, और फिर हर बार आपको कराना पड़ेगा, तो ये हम यही सोच के चलें कि जब हम चाय कॉफी का सेवन करें तो उसके बाद कुल्ला करें, ताकि जो उसका जो इमीडिएट दुष्प्रभाव है दांतों पे या मसूड़ों पे या पूरे माउथ में उसका जो है इफेक्ट जो है

0: वो मिनिमाइज हो जाए। जी
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम आज हमारा जो विषय है वो हम ओवरऑल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, मौखिक स्वास्थ्य से, तो खास तौर पर कौन सी ऐसी बीमारियां, जैसे हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे लगता है कि भाई ये ना हो जाए, वैसे तो सारी बीमारियां हम गिना सकते हैं, लेकिन क्या हार्ट डिजीज और डायबिटीज से भी ओरल हेल्थ का कोई रिलेशन है?
0: देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई है, और पहले तो हम लोग कहते कि नहीं ये रिस्क फैक्टर है, पर एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है। कहने का मतलब वो रिस्क फैक्टर का कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप अपने ओरल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं तो इस रिस्क फैक्टर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि अगर दांत खराब है या ओरल हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो उसका जो इफेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे भी पड़ता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आजकल बहुत सारे होते हैं उससे भी पड़ता है, और क्रोनिक गम इन्फ्लेमेशन जो है वो लिंक्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस पे, जो आपने देखा होगा कि आजकल प्लाक हो जाता है और उससे स्ट्रोक हो सकता है। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के द्वारा जो है इसको स्थापित किया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो ओरल बैक्टीरियास और जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड जो मसूड खराब होते हैं तो मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं, और उससे क्या है कि जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर होती है, और बहुत सारे जो बायोमार्कर्स हैं, चाहे वो सीआरपी है, इंटरल्यूकिन है, टीएनएफ है, वो सारे बायोमार्कर्स के द्वारा इन्फ्लेमेशन सेटअप होती है बॉडी में, और जिससे क्या है जो हमारे आर्टरीज का एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है और प्लाक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज में, और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, और फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि डायबिटीज और जो गम डिजीज है इसका एक बड़ा बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कि जिनको ये देखा गया है कि जिन लोगों को गम डिजीजेस है उनको लगभग 25% लोगों को हायर रिस्क होता है डायबिटीज होने का। तो यानी गम डिजीज से डायबिटीज हो सकती है, और जिनको डायबिटीज है उनको हाई रिस्क होता है गम डिजीज का। तो एक बाई डायरेक्शनल जो है टू वे रिलेशनशिप है कि गम डिजीज से डायबिटीज हो सकती है, और जो डायबिटिक है उनको गम डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये प्रूवन फैक्टर है। तो ये एक दो तरफा का संबंध है गम डिजीजेस और हमारी जो सिस्टमिक कंडीशंस हैं। जी
1: जी, हमारे एक श्रोता है, काफी देर से लाइन पर वेट कर रहे हैं, आइए बात करिए, आप क्या पूछना है आपको डॉक्टर साहब से? हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी समा, आप रेडियो डॉक्टर में हैं और काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे, चलिए पूछिए क्या पूछना है।
2: नहीं नहीं, पहले तो ये डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगता है, हर तरह की
1: थैंक यू
2: बात होती है।
1: जी
2: सर, मैं ये पूछ रहा था, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं सलाउद्दीन
1: जी,
2: ये आरसीटी कराने के बाद कितने दिन में कैप चढ़ाना चाहिए इसमें?
0: जी तो सलाउद्दीन जी, सलाम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। सलाउद्दीन जी, ऐसा है कि एक तो आरसीटी का जब से इजाद हुआ है ये सबसे बढ़िया तरीका है दांतों को बचाने का, जो दांत निकलने वाले थे उनको हमने आरसीडी करके बचा लिया। बट क्या होता है कि आरसीडी के बाद क्योंकि दांत अंदर से खोखला हो गया था और फिर हमने उसको आरसीटी कर दिया, तो वो दांत थोड़ा सा एक उसमें एक थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है, यानी मैं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कमजोर हो जाता है, बट उसमें टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है आरसीडी की वजह से या कीड़े की वजह से दांत पहले से ही खोखला होता है, तो उसको अगर हमें पुनः स्थापित करना है तो उसके ऊपर हम आवरण यानी उसके ऊपर कैप लगाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही आप आरसीटी करें उसके तुरंत बाद आप कैप लगवा दें, कि वेट क्यों करें, क्योंकि वेट हो सकता है कि जब आप वेट कर रहे हैं उस दौरान वो दांत टूट जाए, बिकॉज पता थोड़ी लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस दांत पे फोर्सेस पड़ती हैं या प्रेशर आता है तो उसमें टूटने के चांसेस है, वो कभी भी टूट सकता है, तो हम वेट क्यों करें। मैं ये चाहूंगा कि रूट कनाल के तुरंत बाद आप, और कई बार क्या है डॉक्टर जो है दोनों चीजें साथ ही साथ करते हैं, रूट कनाल भी करते हैं उसके बाद तुरंत कैप लगा देते, तो मेरी सलाह तो यही है कि आप जितना जल्दी हो सके इसका उस तरह से इलाज करें।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सही जवाब डॉक्टर साहब के जरिए मिल गया, और यहाँ पर एक बार रुकेंगे, एक गाना सुनकर वापस आएंगे, आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए, और जो भी आपको लिखना है या पूछना है डॉक्टर साहब से पूछते रहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश वर्मा और आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और रेडियो डॉक्टर में आज काफी सारी बातचीत हो चुकी है ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पर, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं, समय तो नहीं होगा कि सबको हम विस्तार से ले पाएं, पर मैं नाम पढ़ देती हूं जो श्रोता समय निकालकर हमें लिख रहे हैं। जानकारी डॉक्टर साहब ने अपने बातों में पूरी कवर कर ली है ऑलमोस्ट, तो आप सबको जवाब मिल गया होगा अगर आप हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे होंगे। हमें मैसेज किया है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से। हमें मैसेज आया है, लिखने वाली है रेणू फ्रॉम मेरठ यूपी। इसके बाद हमें मैसेज मिला है नीरज पांडे जी का। साथ ही साथ श्याम मित्तल जी ने लिखा है 75 वर्ष के रोहिणी से, शालिनी जी डॉक्टर वर्मा ने बिगनिंग में जो वर्ड्स कहे वो अनमोल है, कांग्रेचुलेशंस, पूरे प्रोग्राम अबाउट ओरल केयर इसी में ही समाहित हो गया था जो आपने शुरू में बोला था, इसकी उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और डॉक्टर अनिल कालरा ने हमें लिखा है गुरुग्राम से कि शालिनी जी आई एम अ रेगुलर लिसनर, इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और राहुल लिख रहे हैं दिल्ली से, कुछ प्रश्न हैं डॉक्टर साहब से और उसके जवाब डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम में जो आरंभ में दे चुके हैं। इसके अलावा शिव जी ने लिखा है हमें मेरठ से, और लिखा है बलजिंदर जी ने भी दिलशाद गार्डन दिल्ली से लिखा है, और हमें मैसेज किया है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ने ओखला संगम विहार से, इन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, तारीफ की है इन्होंने हमारे कार्यक्रम की। और नीता ने लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से। इसके अलावा कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं रविंदर पाठक, आशा पाठक नीदरलैंड से, इन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम में दी है, धन्यवाद दे रहे हैं। सिक्किम नामची से मनिका ने हमें मैसेज किया है, और

0: ये मैसेज है सुनील कुमार जी ने यूपी से किया है। एक प्रश्न और आया है डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक ब्रश जो होते हैं वो कितने काम करते हैं। मैं नाम ढूंढ रही हूं, अभी अगर नाम मिलेगा तो मैं आपके जवाब के बाद बताऊंगी उनका नाम। तो इलेक्ट्रिक ब्रश क्या हेल्प कर सकते हैं?
1: देखिए, इलेक्ट्रिक ब्रश जो है, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो जो स्पेशल नीड्स के लोग थे उनके लिए इजाद हुआ था।
0: अच्छा।
1: और फिर बाद में इसमें बहुत सारी बदलाव आए और आज ये है, ये बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही लाभकारी है। इनफैक्ट मैं जब यहाँ इंस्टीट्यूट में था तो मैं बहुत सारे अपने मरीजों को जो अपनी सफाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे तो मैं इनको ये प्रिस्क्राइब करता था और मैंने देखा कि इस पे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि इसका जो ब्रश है बहुत छोटा, इसका जो टिप है, ब्रश की टिप है वो बहुत छोटी है और वो गोल है और वो हमारे दांतों के हर, माउथ के हर पार्ट में आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा यह है कि वो इलेक्ट्रिक से चलता है तो क्या है कि उससे जो है वो जो सुविधा होती है कि आपको उतना ही क्योंकि इसमें कई में प्रेशर के सेंसर्स भी होते हैं कि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये रुक भी जाएगा या कम हो जाएगा और ये अलार्म देगा या इसका एक रेड लाइट जो है वो जलने लगेगी। तो कई बार हम देखा कि आजकल बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी होती है क्योंकि दांत घिस गए हैं या जब हम ब्रश करते हैं तो बहुत जोर से ब्रश करते हैं और बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं, उससे जो है दांत का ऊपर का जो आवरण है वो घिस गया है तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो ओरल जो ये इलेक्ट्रिक ब्रश है ये बहुत ही लाभकारी है।
0: जी, बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: हाँ, बच्चों का भी एक छोटे साइज का आता है, बट बच्चा इतना बड़ा हो कि वो समझ सके और उसको हैंडल कर सके। तो देखिए, है तो ये ब्रशिंग ही, ओनली थिंग के हम अपने उसको मैनुअली की बजाय वो एक एक बैटरी से चल रहा है, चार्ज है, बैटरी से चल रहा है और उसमें क्या कंसिस्टेंसी है और यूनिफॉर्मिटी है। और क्योंकि स्ट्रोक्स कई बार हम नहीं लगा पाते हैं, हम कहते हैं ना नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ करो और ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ करो, जो हम कई बार मैनुअली नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत इफेक्टिव है और इसमें कोई इस पे अगर लोग मैनुअल से ठीक है तो मैनुअल कर सकते हैं, ये नहीं कि सभी को ये करना है, पर जो इससे कंफर्टेबल है वो उनमें कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, वो यूज कर सकते हैं और ये क्वाइट इफेक्टिव गैजेट है।
0: जी जी, तो मुझे नाम मिल गया है, राधिका जी ने दिल्ली से ये प्रश्न किया था। तो उम्मीद है राधिका जी के साथ साथ बहुत सारे और लोगों के मन में जो ये प्रश्न था
1: उनको। थोड़ा महंगा होता है
0: जी,
1: तो अगर आप मैनुअल जो है वो बहुत सस्ता है, मैनुअल से अगर आप खुश है, और इसका बेस्ट ये है कि इसकी जो टिप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो
0: करनी भी चाहिए क्या?
1: करनी चाहिए, जब वो भी उसपे भी ना एक डाई होती है। अच्छा। वो जब डाई ब्लू डाई होती है या और ब्लू नॉर्मली ब्लू या ग्रीन होती है, तो जब वो समय के साथ वो डाई सफेद हो जाती है, यानी जब वो घिस जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो एक इंडिकेटर है कि इट्स इज टाइम नाउ टू चेंज द टिप। जी
0: चलिए, एंड अब इट्स टाइम नाउ टू क्लोज आवर प्रोग्राम बिकॉज 4 बजने वाले हैं और अब समय नहीं है कि हम आगे और डॉक्टर साहब से और बातचीत कर सकें। तो धन्यवाद सभी को कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता की और आज का रेडियो डॉक्टर अब हम समाप्त कर रहे हैं। विषय था ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ और हमारे विशेषज्ञ हमारे रेडियो डॉक्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब यहां आने के लिए, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार शालिनी जी,
0: और सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस समय प्रधानमंत्री वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के विशेष इलाज वाले सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके।

के सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसनायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी है। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 नए मंत्री शामिल किए गए और वर्तमान में सोमेंद्र तोमर और अजित पाल को कद बढ़ाकर उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। और खेलों में शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थी। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं तो अपनाइए ये टिप्स जो आपको मैं आज लम्हे प्रोग्राम में बताने वाला हूं। तो सुनते रहिए आरजे चेतन के साथ आज का लम्हे प्रोग्राम। क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने आप को कंट्रोल करने और सकारात्मक तरीके से समस्या का सामना करने में मदद करता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम स्थितियों या व्यक्तियों के प्रति हमारे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के उपायों को सीखते हैं। यह हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए ध्यान, स्थिरता और तंत्र मंत्र तकनीकों को अपनाने में मदद कर सकती है। गुस्सा आना सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादा गुस्सा आने से आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और शरीर में नई बीमारी भी पैदा होती है, जैसे चिंता, अवसाद, सिरदर्द, नकारात्मकता और बीपी की समस्या आदि। यदि आप इस आदत से तंग आ चुके हैं और इसे निजात पाने के लिए कुछ आसान टिप्स देने जा रहा हूं मैं आपका आरजे चेतन इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc

1@gmail.com। दोस्तों, सबसे पहले गहरी सांस ले। जिस भी पल आपको गुस्सा आए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस ले। इससे आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रिया शामिल है। गहरी सांस आपको तनाव से मुक्त करने में मददगार साबित हो सकती है और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। अपना मन पसंद गाना सुने। अच्छा संगीत आपके गुस्से और मन दोनों को शांत करता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकता है। अच्छा संगीत सुनने से आपका ध्यान भी उस बात से हट जाएगा जिससे आपका गुस्सा और कम हो जाएगा। किसी भरोसेमंद यानी ट्रस्टवर्थी फ्रेंड से बात करें। इसी तरह अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में किसी को बताएं या फिर बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है। अगर ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो संभव है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों में सुकून ढूंढ सकते हैं। रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ओके जैसे शब्द या व्याख्यान सभी अच्छे उदाहरण हैं। यदि आपकी किसी से अभी अभी व्यक्तिगत रूप से या किसी कॉल पर झगड़ा हुआ है तो ये जरूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें। एक शांत कमरे में सोए और लोगों के आसपास रहने से कुछ समय के लिए बचें। इससे आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। पैदल चलने से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल आपके सभी मांसपेशियों को आराम देता है बल्कि आपको शांत करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने के अधिक समय भी देता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना है और थोड़ा टहल कर आना चाहिए। क्रोध प्रबंधन एंगर मैनेजमेंट एक उपचार नहीं है बल्कि एक चिकित्सा है जिसे आप अपने परामर्शदाता के साथ अपने मुद्दे पर रखते हैं और आप उन्हें कैसे सुधारेंगे इस पर निर्भर करता है। इसमें आपके चिकित्सक के साथ खुली बातचीत की एक श्रृंखला शामिल होती है। नई प्रणाली का पता लगाते हैं जहां आप अपनी निराशा को बाहर निकाल सकते हैं या उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। इसमें मूल रूप से कई स्तर शामिल है और आपकी चिकित्सीय स्थिति के आधार पर चिकित्सक आपके द्वारा होने वाले स्रोत की संख्या का सुझाव देंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat feedbackamc1@gmail.com।

क्रोध को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक अभिव्यंजक और स्वीकार्य तरीके से बाहर जाने देना चाहिए। उपचार के सामान्य लक्षण में से एक यह शामिल होगा कि आप चीजों को कैसे हल्के से लेते हैं। आपको एक अलग दृष्टिकोण से स्थिति को देखना सिखाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर चीज को मजाकिया अंदाज में लेने के लिए तैयार हो सकते हैं और उस पर हंस सकते हैं। क्रोध प्रबंधन आपको अपनी पहचान करने और उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामले में दवाइयों और दवाइयों को शांत प्रभाव में शामिल किया जा सकता है। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तो अवसाद निरोधक गोलियां निर्धारित की जा सकती है। एक चिकित्सक का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आप कई वर्षों के अनुभव वाले एक को चुनते हैं और जो आपके मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये होगी कि अगर स्थिति इसकी मांग करती है तो आपकी जीवन शैली और आपके परिवार को भी बदलना होगा। गुस्सा बिल्कुल एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक भावना है जिस पर आप

नियंत्रण खो सकते हैं और आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपको एक ताजा और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है जहां तनाव आपको प्रभावित नहीं करता है। यदि आपके कार्य की प्रकृति आपकी स्थिति का मूल कारण है तो आपको काम में बदलाव देखने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हम मानते हैं कि यह बहुत छोटी समस्या है, पर यह छोटी छोटी समस्या आगे बढ़कर बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको जड़ से उखाड़ दीजिए और एक हैप्पी फैमिली और एक हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं अल्फा जेन मेरे साथ यानी मोक्षी के साथ. और आपको पता है इसमें क्या करना है. आपको बनना है अगर रेनबो जीनियस तो आपको करना है मुझे कॉल 2342-1080 पे या फिर 2342-1084 पे. और अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का कोड 011 लगाना मत भूलिएगा. करिए फटाफट मुझे कॉल. मैं तैयार हूं अपने सवालों के साथ और मैं पूछूंगी आपसे पांच सवाल. और अगर आपने पांचों सवाल के जवाब सही दे दिए तो फिर आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस. ऑल द वेरी बेस्ट. स्टार्ट डायलिंग

0: तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आने लगी है कॉल्स, तो हम पहली कॉल लेते हैं हमारे लिसनर। हेलो हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, आपको हमारी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है?
1: जी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है।
0: अच्छा, तो आवाज तो मतलब क्लियर है आपको? थोड़ा तेज मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्लियर है आपको क्या मेरी आवाज?
1: जी जी बिल्कुल क्लियर
0: जी,
1: है।
0: जी जी, तो हम क्या क्विज का प्रोग्राम शुरू करें? इससे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है?
1: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: आप क्या करते हैं उमेश जी?
1: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एज कॉन्स्टेबल हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी, तो हम लोग आप तैयार हैं फिर हमारा क्विज का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट?
1: जी
0: ठीक है, चलिए हम पहला सवाल आपसे पूछते हैं साहित्य से। आपको उम्मीद है साहित्य में रुचि होगी, और आजकल एक किताब है हिंदी की बहुत पॉपुलर हो रही है, सब लोग बहुत पढ़ रहे हैं, उस किताब का नाम है गुनाहों का देवता। तो क्या आप गुनाहों का देवता जो किताब?
1: धर्मवीर भारती।
0: अरे वाह, ये तो आपने सवाल पूरा करने से पहले ही आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही बोला है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मनोहर पानीकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किनको नियुक्त किया गया था?
1: जो करंट प्रमोद सावंत है करंट में, तो
0: जी अच्छा, ये भी आपका सवाल सही है। आप बढ़ते हैं आगे, यानी अब आप आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आप ये बताइए, अगला ये तीसरा सवाल थोड़ा सा आसान है, जिस स्पीड से आप जवाब दे रहे हैं मुझे तो लग रहा है आप तैयार हैं पूरा। तो चलें तीसरे सवाल की तरफ उमेश जी।
1: जी,
0: तीसरा सवाल है, भारत और चीन के जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, तीसरा सवाल भी बिल्कुल सही। और अगला सवाल आता है, चौथा सवाल यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल शुरू करूं मैं, आप तैयार हैं? जी, अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितनी उम्र तक उस पद को धारण कर सकते हैं?
1: 62 वर्ष।
0: आपने अभी तक इतने अच्छे जवाब दिए, उसमें मैं आपको एक और चांस देती हूँ। 62 वर्ष तो सही नहीं है आंसर, एक और आप दे सकते हैं।
1: 65।
0: नाइस, करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आपने जिस तरीके से, जिस स्पीड से दिया है, उस स्पीड से मैं आपको पक्का बता सकती हूँ कि इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
1: सबसे छोटा ग्रह बुध है।
0: बुध है, यानी मर्क्यूरी। और इसी के साथ ही आप बनते हैं हमारे पहले रेनबो जीनियस। व्हाट अ प्रोग्राम उमेश जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये लगातार 5वां वीक है मेरा जिसमें मैं लगातार आपके 500 क्वेश्चनों के जवाब देता आ रहा हूँ।
0: वाह, यानी आपका ये सिलसिला है जो सिलसिला अभी टूटा नहीं है जीतने का, और ना टूटे वही अच्छा है।
1: कोशिश करेंगे
0: जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑल दी वेरी बेस्ट, खूब खुश रहिए, मजे करिए। थैंक यू, थैंक यू,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से हमारे पहले लिसनर ही हमारे रेनबो जीनियस बन चुके

के हैं, तो आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। आपको हमें करना है कॉल, कॉल का नंबर है 2342108 और 2342104। और अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप लगाएंगे 011 जो कि है दिल्ली का कोड। और लगाती हूँ मैं अगला वाला गाना, फटाफट कॉल करिए, मैं कर रही हूँ आपके कॉल का वेट।

0: हम भी यहाँ।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस और हम ढूंढ रहे हैं अपना अगला रेनबो जीनियस। पहले रेनबो जीनियस तो उमेश जी अनाउंस हो ही चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
2: हेलो,
1: आप मुझे सुन पा रहे हैं?
2: हाँ जी।
1: आप अपना नाम बताइए।
2: यज्ञ।
1: यज्ञ, आपका नाम यज्ञ है। यज्ञ, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सुहाना मोहाली पंजाब से।
1: वाह, सुहाना मोहाली पंजाब से बोल रहे हैं आप। क्या करते हैं आप यज्ञ?
2: मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: अरे वाह, तो आपको पता है फॉर्मेट इस प्रोग्राम का कि मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी और आपको 5ों के जवाब देने हैं, और अगर आप 5ों के सही जवाब दे देते हैं तो आप बन जाते हैं रेनबो जीनियस। राइट
2: राइट मैम, कोशिश करेंगे।
1: कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करिए आप। तो पहला सवाल जो मेरा है वो फिर से किताबों को लेकर के है। तो एक अंग्रेजी में किताब है और उसको लिखने वाले भी इंग्लिश के ही लेखक हैं, जिसका नाम है, जिस नाटक का नाम है हैमलेट। आपको पता है किन्होंने लिखी है, कौन है इनके राइटर?
2: दोबारा बताना मैम।
1: नहीं, ऑप्शंस नहीं है।
2: क्वेश्चन दोबारा बताना।
1: अच्छा, क्वेश्चन में दोबारा बताती हूँ। ये एक इंग्लिश का प्ले है जिस प्ले का नाम है हैमलेट। ये किन्होंने लिखी है?
2: नो मैम,
1: नहीं याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है यज्ञ?
2: मैम मेरा एक म्यूजिक है और मैथ है।
1: वाओ, म्यूजिक और मैथ्स, बहुत अच्छा, खूब पढ़ते
2: हैं। मैम मैं चाहता हूँ कि जो आपने मेरा एक क्वेश्चन पूछा है ना, वो आप दूसरे एक मेरे साथ अगर आगे कोई कॉलर आएंगे उनसे पूछ लेना, ताकि मेरे को इसके बारे में पता चल जाए।
1: जी जी, जरूर, आप जैसा कहें यज्ञ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे अगले कॉलर को अब कॉल में आप लेने वाली हूँ। अब मैं आपका कॉल रखती हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।
2: बाय मैम।
1: बाय, टेक केयर। हम अपने दूसरे कॉलर को लेते हैं ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो।
3: हेलो मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, आप अपना नाम बताइए।
3: मैं संजय बात कर रहा हूँ।
1: संजय जी, संजय जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक अपना एडजस्ट करिए संजय जी।
3: एक सेकंड।
1: हाँ,
3: ठीक है।
1: थोड़ा तेज बोलिए, बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, अब बेटर है, अब बेटर है। जी संजय जी, आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है?
3: जी जी, आपकी आवाज सही।
1: जी तो बताइए संजय जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: दिल्ली से।
1: दिल्ली से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप संजय जी?
3: अभी तो कुछ नहीं करता मैं।
1: अच्छा,
3: अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ।
1: अच्छा, ठीक है, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर स्ट्रगल। और आप जल्दी से आपका स्ट्रगल ओवर हो और जो आपके सपने हो वो जल्दी ही पूरे हो। तो चलिए, हमारा सवालों का सिलसिला शुरू।

0: होता है, आप तैयार हैं?
1: जी मैम जी।
0: जी, तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि प्ले हैमलेट किन्होंने लिखा है?
1: शेक्सपियर ने।
0: शेक्सपियर ने, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ये। तो इसका मतलब पहला आप जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वजह से छोड़ी थी या किस इवेंट के बाद छोड़ी थी? मेरा सवाल
1: वो मैम असहयोग आंदोलन के लिए छोड़ दिया था उन्होंने।
0: ये आंसर तो सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अभी मैं अगले कॉलर से यही वाला सवाल दोबारा पूछूंगी। तो
1: आपको पूछा था नाइटवुड में क्यों, नाइटवुड
0: हाँ, नाइटवुड की उपाधि उन्होंने क्यों छोड़ी थी?
1: तो जलियांवाला बाग में हुआ था ना।
0: एग्जैक्टली, जलियांवाला बाग वाला इवेंट आपको बताना था। बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ ही हम पहुंचते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ये बताइए, ये बहुत आसान है। आप तीसरे सवाल में आप ये बताइए मुझे कि नर्मदा और तापी जो रिवर है, नर्मदा और ताप्ती, उनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी माउंटेन रेंज?
1: अरावली।
0: ये आंसर हो जाता है गलत आपका। कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा खेला। दो आंसर्स आपने, काफी टफ क्वेश्चन था, सेकंड वाला तो सच में टफ था, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। और आपको बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका स्ट्रगल का फेज जल्दी से ओवर हो और आप जो भी कुछ जिंदगी से चाहते हैं वो आपको मिले। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों हम अभी एक और कॉल ले सकते हैं, पर हम अभी एक गाने वाला ब्रेक लेंगे, है ना? और उस गाने वाले ब्रेक के बाद हम फिर से कॉल लेंगे और फिर से सवाल पूछेंगे, फिर से बातें करेंगे। आप कॉल लगाइए और मेरे पास हैं आपके लिए सवाल तैयार।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस की क्विज, और आप जानना चाहेंगे कि अगला रेनबो जीनियस कौन होगा। तो अभी तक हमको एक रेनबो जीनियस मिल चुके हैं, उमेश जी। उमेश जी के बाद हम और भी कॉलर से बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम अगले कॉलर को ऑन एयर लेते हैं, ये उम्मीद में कि अब वो बनेंगे हमारे रेनबो जीनियस। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए।
1: जी, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, कुतुबपुर हिसार हरियाणा से।
0: अच्छा, हिसार हरियाणा से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैम, हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, हरियाणा पुलिस में, आपको हमारा सलाम है। और
1: जी,
0: हम
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू। और हम कुछ आगे स्टार्ट करते हैं, और आगे स्टार्ट करने में आपको पता ही होगा कि एक के बाद एक सवाल पूछे जाते हैं, आपको पांचों सवालों के सही जवाब देने हैं, और अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आप बन जाते हैं रेनबो जीनियस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप कर पाएंगे। बिल्कुल, तो मैं
1: जी मैम कोशिश रहेगी।
0: जी, तो मैं ये वाला सवाल भी किताब से ही शुरू करती हूँ। एक फेमस किताब का नाम लेती हूँ और आपको उसकी ऑथर का नाम बताना है। उस किताब का नाम है, वो किताब है हिंदी में, किताब का नाम है राग दरबारी, किन्होंने लिखी है?
1: रामचंद्र शुक्ल।
0: नहीं, ये नाम सही।
1: राग दरबारी पूछा ना मैम?
0: जी जी, राग दरबारी।
1: शुक्ल नाम है ना मैम शायद, कुछ
0: शुक्ल है, लेकिन आपने फर्स्ट नेम सही नहीं बताया।
1: श्रीलाल शुक्ल है मैम।
0: श्रीलाल शुक्ल है पहला।
1: काफी फेमस ये नॉवल।
0: हाँ, काफी फेमस है, इसीलिए हम लोग ऐसी ही किताबों के नाम लेंगे कि फेमस है, क्योंकि किताबों की दुनिया तो बहुत बड़ी है। जरूरी नहीं है हर दुनिया, पूरी दुनिया भर की किताबें हम उनका नाम और ऑथर जानते हों, इसीलिए ऐसी ही किताबों का नाम लिया जाता है जो किताबें बड़ी ही फेमस है। तो चलिए हम लोग रामधानी जी आगे चलते हैं, और मुझे आप ना सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट्स का नाम बताइए।
1: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम।
0: सिक्किम नहीं, हो गया था पहले ही पूरा, आपने सिक्किम एक्स्ट्रा बोल दिया, पहले ही हो गया था, ठीक है। और ये देखिए, काफी काफी लोग अटक जाते हैं इसमें, एक तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई भूल ही जाता है कि कोई ना कोई एक, लेकिन आपने बहुत रफ्तार से सारी बोली। चलिए, आपका दूसरा सवाल भी सही होता है, इसी के साथ ही सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सही होता है। आप ये बताइए कि ये जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है, ये जो दोनों नदियां हैं, इन नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
1: ये अमरकंटक से निकलते हैं,
0: इसको एक रेंज बोलते हैं, पूरी पर्वत श्रृंखला है।
1: जी जी जी, इनको बोलते हैं सतपुड़ा।
0: सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसके साथ ही आपके तीन हो गए हैं सही जवाब, और अगला क्वेश्चन है आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि आंध्र प्रदेश का जो डांस है, जो स्टेट डांस है, उसको क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के स्टेट,
1: आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी।
0: कुचिपुड़ी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका सही है। अब आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी थी?
1: महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि,
0: महात्मा की उपाधि, सॉरी,
1: महात्मा की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
0: ये आंसर आपका गड़बड़ जा रहा है। फिफ्थ,
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: आपने दो क्वेश्चंस में दो दो अटेम्प्ट।
1: जी मैम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि दो उपाधियां थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो उनको राष्ट्रपिता कहा था,
0: राष्ट्रपिता कहा था जी,
1: और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा कहा।
0: 1915 में पहली बार उन्होंने इसका महात्मा का संबोधन करके, ना महात्मा का संबोधन उनके लिए प्रयोग किया था। ये हो गया आपका पांचवा सवाल, और पांचों सवाल के सही जवाब देने के बाद आप बन जाते हैं हमारे रेनबो जीनियस नंबर।
1: थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, लेकिन
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सपोर्ट आपको पूरा

0: किया है, और मैंने मौका भी जरूर, आप अगर हमारा प्रोग्राम ही यही है इंटरेक्शन का, है ना, तो अगर हम बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी हंसी मजाक नहीं
1: बिल्कुल,
0: करेंगे, तो फिर प्रोग्राम का इतना
1: थोड़ा सा जैसे है ना, इस प्रोग्राम में फोन लगना बहुत बड़ी बात
0: बहुत
1: होती है,
0: बहुत
1: तो नर्व
0: बड़ी
1: सिस्टम थोड़ा सा है ना,
0: जी,
1: हाँ, बढ़ जाता है।
0: और इसीलिए जब फोन लग जाता है और जिसका भी फोन कनेक्ट होता है उसको पूरा वक्त देना, उनसे पूरी बात करना, यह फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती
1: मैम
0: है।
1: मैं कुछ कहना चाहूंगा,
0: जी जी
1: आकाशवाणी अगले महीने 90 वर्ष अपने पूरे कर रही है इस
0: जी जी
1: उपलक्ष्य में,
0: जी
1: कि आवाज और ये विश्वास का रिश्ता जो है बदलाव के दौर में नहीं बदला है और निरंतर जो है प्रगाढ़ होता गया है, और चाहूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से आवाज और विश्वास का रिश्ता जो है बना रहे।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी सबकी तरफ से आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपना प्यार और भरोसा ऐसी तरह से बरकरार रखें
1: जी, धन्यवाद मैम,
0: और हमेशा हमको सुनते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट,
1: ओके मैम,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे दूसरे लिसनर जो बन चुके हैं रेनबो जीनियस, इनका नाम है रामधारी जी और ये हरियाणा से थे। उमेश जी के बाद दूसरे लिसनर जो बने हैं रेनबो जीनियस, ये भी हरियाणा से हैं, और कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और हम अगली कॉल जरूर लेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक गाना और गाने के बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
2: Feel alright, wanna natural night.

सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जिम,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नए लिसनर और मैं भी तैयार हूँ अपनी क्विजेस के साथ। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आपका नाम सर?
1: शिव शंकर बोल रहे हैं मैडम, कटिहार से।
0: शिव शंकर जी बोल रहे हैं कटिहार से। आप क्या करते हैं शिव शंकर जी?
1: मैडम अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, निबंधन विभाग में।
0: ओके।

0: चलिए भाई, ये तो मतलब मुझे तो लग रहा है आप भी बनने वाले हैं रेनबो
1: आज
0: चीन।
1: आज संडे है हमारा, इसलिए छुट्टी में है, इसलिए जो है।
0: नहीं ये तो
1: और
0: है।
1: मेरा मतलब फेवरेट ये प्रोग्राम है, टाइम निकाल कर उसको सुनते ही रहते हैं।
0: आप ना और प्रोग्राम्स भी सुनिए, और भी बहुत सुंदर सुंदर
1: और
0: प्रोग्राम्स
1: ये
0: हैं।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया जो सुनते हैं सुबह सुबह,
0: हाँ
1: और
0: पूरा
1: टाइम नहीं
0: एकदम
1: मिलता है बाकी।
0: इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। सैटरडे संडे को तो
1: जी
0: कम से
1: जी
0: कम हमारे सारे प्रोग्राम सुनिए, और सैटरडे संडे को तो इतने
1: जी एकदम
0: मजेदार
1: एकदम सर,
0: प्रोग्राम।
1: कोई दिक्कत नहीं, पूरे सुनते हैं मैडम,
0: जी जी
1: वो सही चलते हैं रेडियो।
0: जी चलिए आप शिवशंकर जी, हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किताब से एक सवाल पूछूंगी, आप तैयार हैं?
1: मैडम किताब छोड़ दीजिए, किताब से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उम्मीद कम लग रहा था, पूछिए कोई दिक्कत नहीं है
0: ये तो आपने मतलब आपने मेरा सवाल ही बदल दिया। बताइए
1: अच्छा
0: इस फॉर्मेट में मैं सबसे सबसे पहला क्वेश्चन बुक से पूछ रही हूँ, आपने कहा बुक से
1: अच्छा
0: सवाल।
1: पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
0: लेकिन मैं बहुत इजी, मैं बड़ी फेमस किताब लेकर के आई हूँ जिसका पता होगा आपको, इसलिए मतलब
1: कोशिश करेंगे।
0: ठीक है। एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, हिंदी की किताब है, उसका नाम है शेखर एक जीवनी। इसके लेखक कौन है?
1: नहीं बता पाएंगे मैडम, पहले हम बोल दिए थे।
0: आप पढ़ते नहीं हैं, मतलब आपको पढ़ने का कुछ उसका शौक
1: नहीं
0: है?
1: मतलब जो है ये सब बुक जो है हमको लगा 9th-10th क्लास का ही होगा, तो इससे पहले हम बहुत पहले कर लिए, 2012 में ही ग्रेजुएशन कर लिए हैं मैडम,
0: अच्छा, नहीं ये बहुत
1: इसीलिए तो
0: पुराना
1: वो सब
0: बुक
1: बुक हम छोड़ दिया। अभी मेरा कंप्यूटर का जो भी काम होता है वर्क होता है कंप्यूटर पर करते हैं,
0: ये
1: इसीलिए उससे
0: देखिए,
1: थोड़ा
0: जो
1: सा इंटरेस्ट बढ़
0: जो
1: गया है।
0: साहित्य प्रेमी है ना, साहित्य प्रेमियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन
1: हाँ।
0: किताब है। ये शायद ये किताब साहित्य प्रेमी अगर कोई होगा तो उन्होंने शायद, कई लोग तो इसी से पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी फिलोसफिकल
1: हाँ,
0: किताब
1: पढ़े
0: है। और
1: होंगे हम भी लेकिन याद नहीं आ रहा, जैसे ही नाम पूछिएगा तो पता नहीं लगेगा।
0: जी, इनका नाम है, लेखक का नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन। इनका
1: वही तो बोले कि पढ़े हुए 9th क्लास का वो
0: जी,
1: बुक
0: और उनका जो जो उनका बहुत ही प्रचलित नाम है, जो नाम उनका बहुत फेमस है, वो अज्ञेय नाम से जाने
1: अज्ञेय
0: जाते
1: नाम है। जी
0: हैं।
1: मैडम
0: अज्ञेय, जी हाँ। तभी मैंने देखिए आपसे सबसे सरल सवाल उठाया था। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत
1: जी,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, और प्रोग्राम बहुत अच्छी कर रहे हैं मैडम।
0: थैंक यू, थैंक्स अ लॉट,
1: अच्छा,
0: थैंक यू,
1: आपका
0: थैंक यू।
1: पूछने का तरीका भी अच्छा है, कॉलर भी ज़्यादा ज़्यादा लिए हैं, इसलिए धन्यवाद मैडम। इसी तरह आप आते रहिए, बराबर अच्छा
0: जी
1: रहेगा
0: जी बिल्कुल,
1: कार्यक्रम
0: जरूर,
1: करने के लिए।
0: जी, जरूर, धन्यवाद आपके
1: जी
0: जुड़ने
1: जी
0: के लिए और ऑनेस्टी के लिए,
1: थैंक
0: आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके
0: जी, अब हम देखते हैं कि हमारे कोई और लिसनर अभी ऑन ऑन एयर आने के लिए तैयार हैं या नहीं। अभी तो मैं देख पा रही हूं कि अभी तो मुझे कोई कॉल नहीं नजर आ रही है। भाई दोस्तों, क्या हुआ, आप लोगों ने कॉल करना एकदम से बंद कर दिया? अच्छा, आपको लग रहा है कि आखिरी 5 मिनट हैं तो अब क्या कॉल लें? भाई सवाल मेरे पास तैयार थे, आपने कॉल नहीं किया है आखिरी 5 मिनट में। तो इसी के साथ ही चलते हैं हम अपने आखिरी गाने की तरफ। एक कॉल आ गई है, क्या करा जाए, कॉल लिया जाए? नहीं, कॉल मिस हो गई है। अब इसी के साथ ही हम चलते हैं अब इस प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए, और आप लोगों से खूब सारी मस्ती भरी बातें, नॉलेज की बातें, और ये सारी बातें करते हुए मुझे तो बहुत मजा आया, और मैं जानती हूँ आप लोगों को भी पूरा मजा आया होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, अब मैं चलाती हूँ अपना ये वाला गाना जिसका नाम है इश्क वाला लव। इसको इंजॉय करिए और हमारे साथ बने रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ नगले वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया।

0: किया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्यमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेना डेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanta Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, the Prime Minister said, "These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people."
2: आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: Mr. Modi said, India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as Kakatiya Mega Textile Park. Prime Minister Modi said, India is ranked amongst the world's leading economies, with the textile industry serving as one of the strongest pillars of its growth story. He said the sector is now being prepared for a fresh phase of expansion. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandiben Patel administered the oath of office and secrecy at a ceremony held at Janabhavan in Lucknow. Former BJP state president Bhupendra Chaudhary and

0: ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জয়া ভাৰতী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी।

0: एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the centre's 5F vision, spanning farm, fibre, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office in secrecy at the ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. Former BJP State President Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Somendra Tomar were promoted and given independent charge. The founder of Tamilaga Vetri Karagam, TV K actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office in secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी

0: इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा

0: कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ. जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही

0: नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
0: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
1: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative health care with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal health care systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
0: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है।
1: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
0: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है।
1: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for

0: export-oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing, and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहने बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
0: According to government estimates, each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
2: Spotlight. আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাকজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। আমাৰ অনুষ্ঠান নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপতো শুনি আছে। নিবেদন কৰিছো ৰামধেনু।

0: ৰামধেনু অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া দেওবৰীয়া নৈশ সংগীতৰ অনুষ্ঠান দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনা হ'ব।
1: ये आकाशवाणी है। रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवार्षिक अखिल।

0: विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। चार दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदिताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ राम स्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट we conclude the veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।